पर उसम दसती तमिस बीर सूदंस दी लगाए पीपल पुकार स्वीट ब्रोयर बीस्टू ब्रेस कुस्ती.